सो ऐसा हर ध्याई मेरे जियड़े ता सर्ब सुख पावहि मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुख उजल होई है नित ध्याई हर पुरख निरंजना। रहाओ जह हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना।

0: संतन सिओ मेरी लेवा देवी, संतन सिओ व्यवहारा, संतन सिओ हम लाहा खाटिया। केड़ा लाहा जी? हर भगत भरे भंडारा। संत जना दे हिरदे रूपी भंडारे सदा भगती दे नाल भरे रहिंदे ने, ते जेड़ा संत जना दे नाल मिल करके जपना है सतनाम श्री वाहिगुरु, ए संत जना तो लाभ प्राप्त करना है। सो मंगना करिए वाहिगुरु जी दीना दे संबंधी जियो, जो आप जी दे दास संत जन ने उन्हां दे दास हो करके रहिए, सानू सदा संत जना दी शरण बख्शो जी।
1: मांगन मांगो होए अचिंता,
0: भाई मंगण वाले हो करके परमेश्वर जी तो अमृत नाम नू मंग लेना करिए, जिस अमृत नाम नू जप करके सारियां चिंतावां मुक जांदियां ने, फिकर मुक जांदे ने, अचिंत अवस्था नू प्राप्त करीदा है जियो।
1: नानक के हर प्राण।
0: तो इस प्रकार बेनती करदे रहिए, सतगुरु अर्जन देव साहब जी फरमाउंदे ने, हे साडे प्राण रूप परमेश्वर जी कृपा करो, संत जना दे सदके सानू भी मिलना करो। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। महाराज कृपालता करके संत जना दे सदका।

हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि

भूत बन चार चित छो न सब दूधाधारी पौन के हरि सो भुजंग जानियत है। त्रिण के भचैया धन लोभ के तजय तित नब के उड़यत आहे पंछी की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिग ध्यान ठानियत है। जेत बड ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैयता है हूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है। फल के भचैयता है बांदरी के जैया कहे आदिश फिरैयत तो भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के फचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैयता है कौल की बडाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ।

रोड पीट तन गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरिसाल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटा थारी सती सच।

वाय नांड सदा वन में रहत वृक्ष फूक फूक भाम भूम श्रावक धरत है। वाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीत देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कह सके तरत है। जैसे एक सौंगी कहूँ जो किया बरागी बन कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ बन हरी कहूँ बैठ लाए।

आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कुट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ता

कहूँ राजसी साध की तामसी हो, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं, कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं। कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो, कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो, कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या, कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या, कहूँ वेद विद्या कहूँ

गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या हो तं प्रभा हो कहूं छैर छाला छ धरे छत्र धारी कहूं राज साजं।

0: न देह है न के है न जात है न बात है न गे है न व्याप है न तात है न नामत है न मित है न मात है न रंग है न संग है न साध है न लोक है न ताग है न द्वय है न देह है न तय है न द्वय है न देह है न सिंह है न स्याल है न राव है न सिंह है न वान है न व्रत है न सात है न समान है न मत है न सांग है न संग है न जच है न गंद्र है न नर है न नाच है न चोर है न सावर है न साह कुमार है न साह है न साह कुमार है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है गुणज है अभंज है करीम है पुराण है काल है अपाल है ख्याल है अखंड है रोग है रोग है वेद है भोग है सुख है वेद है पंड है अंग है रंग है न संग है न साध है प्रयाण है पवित्र है पुनीत है ब्रह्मा है पवित्र है पुनीत है परमात्मा है सीत है सोच है न राम है न सीत है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न आदेव है न दैत है न नर को सरूप न काम है न क्रोध है न लोभ है न भाव है न द्वेष है न भेद है न द्वि है न द्रोह है न काल है न बाली है सत्यो भाल रूप है गज है अपंज है अब्रह्म है भूत है अपंज है परम है भूत है अछेद छेद है सदा गज गज छेद है भूत स्वेद है प्रिय रूप जल रूप है नग है घड़ी है भेद पर काम क्रोध करण है न जात है न पाप है प्रचित रचित है वजन है पद है रचित रचित अनंत है अनंत है अनंत तेज जानी है मोह अभेद है सदा अछेद तेज मानी है जात है अजात है अगात रूप लेखी है अभोग है अदाग है अच्छे प्रिय प्रेखी है अदाग है अच्छे प्रताप प्रेखी है न परम है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जप है न तंत्र है न मत भाव रलाव है रहन रल है न चित्र है मुझे लाव सरल छल है मंच है अनंत है अगंज से विभूत है अनंत है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कारण है न आद है न काल है न
1: देवदान

दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दलगा है दुख हरे। गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मह खासुर मर्दन सात प्रदक्षण दुष्ट हंते। कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आदभते डुग डुग।

खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पद्मावत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज पे लोकत राजक रोख रुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगे ना भेव लख्यो भ्रम शिव फरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद शो किन श्री पद्मापत।

राखत है अपनो कर दे कर पाप सम्भूहन भेट न पावे। और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सभी सागर जाच भुजंग सब सिर न्यावे। को ने तही ने दह वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रूम नारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेब न भेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पारू मापद से सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मय जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान भेद निपान सब शोक न संग।

प्रवेश बोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख करे दीन दयाला काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कपित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया वसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्ध के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना कितेक बांधे आरुभ के आर।

असिख संहरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणगाता जे असद जताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखद होए मरे पुरख जवन के तुम संकट सब टारे